0: Mirchi. It's hot.
1: Let's go crazy.

Itchy. It's hot.

तुम्हारे अगर वादे सच्चे होते तो आज हमारे दो बच्चे होते। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी, आई सॉ दिस ऑन द बैक साइड ऑफ अ टेम्पो एंड आई वाज लाइक, यार ये कितना सही है। मतलब अपने एक्स को अगर आप ग्रीफ देना चाहते हो तो उसे सिंपली ये मैसेज लिखकर भेज दो एंड आई थिंक द मैसेज विल बी हर्ड लाउड एंड क्लियर। बट मुझे एक बात बताओ, टॉकिंग ऑफ एक्सेस, अपने एक्स के बारे में वो एक क्या चीज़ है दैट यू मिस अ लॉट? कुछ तो होता होगा, इतना बुरा इंसान भी नहीं हो सकता आपका एक्स। और अगर है कोई ऐसी चीज़, व्हाई डोंट यू शेयर इट विद मी मॉर्निंग ग्लोरी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप विद व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपने सेलिब्रिटीज की एक पूरी की पूरी एल्बम बना कर रखी है, लेकिन द फन थिंग इज कि जब भी आपको नॉटी होना होता है आप उन सेलेब्स की एल्बम्स को रेफर करते हो। OMG,
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट्स बताने के लिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर बताया ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, क्योंकि ऐसा कन्फेशन मैंने बहुत सालों में नहीं सुना है। तो एक्चुअली आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है? व्हाट इज दैट कन्फेशन?
2: यार रोशी क्या बताऊँ यार, तेरे को पता है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हूँ, जैसे सबका होता है कि मतलब अलग अलग तरीका होता है टर्न आउट होने का, लेकिन मेरा ये है कि मेरे को जब तक गढ़वाली या पहाड़ी गाना नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं टर्न ऑन नहीं हो सकती बिल्कुल भी।
0: सीरियसली?
2: इवन मैं तो कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब बीच बीच में भी मैं गाने भी लग जाती हूँ।
0: ओके, वन सेकंड, तो आप बेसिकली हो कहाँ से? क्या आप इंडिया के, लाइक आर यू फ्रॉम इंडिया? कौन से कोने से हो इंडिया के?
2: मैं इंडिया के मतलब गाजियाबाद में रहती हूँ।
0: हाँ।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर आती है।
0: हाँ। तो फिर ये पहाड़ी गानों का शौक कहाँ से लगा आपको?
2: क्योंकि मेरा होम टाउन, मतलब मैं उत्तराखंड से ही हूँ, होम टाउन मेरा उत्तराखंड ही है। वो होता है ना एक अलग सी वाइब।
0: हाँ,
2: मतलब
0: हाँ,
2: वैसी वाइब मेरे को गढ़वाली सॉन्ग ही दे सकते हैं, ना पंजाबी ना कोई।
0: हाँ,
2: सिर्फ गढ़वाली गाने।
0: तो आप मतलब बीच बीच में गाने भी लग जाते हो, तो मेरे लिए भी गा के सुना दो, मुझे पता चलेगा कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं।
2: बिल्कुल गा के सुनाती हूँ। बेड़पा को बारमासा, बेड़पा को बारमासा, और भी गा के सुनाओ।
0: तो इसका मतलब क्या होता है?
2: इसका मतलब होता है कि मतलब हमारा एक वो होता है, ट्री है।
0: हाँ,
2: वो मतलब वो 12 मतलब मंथ्स में, 12 मंथ्स में उसमें फ्रूट होते हैं। हाँ, ये होता है इसका मतलब।
0: बट यू नो लाइक आई डोंट ली गेट वॉट योर वाइब इज, क्योंकि मैं जब स्पेनिश गाने सुनती हूँ एंड आई गेट इन द मूड, मुझे पता भी नहीं होता उन स्पेनिश गानों का मतलब क्या होता है। बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आपने मुझे फोन करके बताया कि यार रोशी लाइक गढ़वाली सॉन्ग्स रियली डू इट फॉर मी। अपनी तरफ से क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल,
0: ये लीजिए। आई मीन मैं ये गढ़वाली किसी भी लाइक मेलोडी में नहीं कर रही हूँ, बट
3: यू've been रोशिफाइड।
0: कभी मैं आपके बॉयफ्रेंड से बात करना चाहूंगी एक बार।
2: हाँ जी, बिल्कुल।
0: इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई वैको कन्फेशंस है, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, और कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता हूं। फूकर पे आ

की बातें पीने बाद। शुभ हो बादशाह।

0: आपने सेलिब्रिटीज की एक पूरी की पूरी एल्बम बना कर रखी है, लेकिन द फन थिंग इज कि जब भी आपको नॉटी होना होता है आप उन सेलेब्स की एल्बम्स को रेफर करते हो। OMG,
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट्स बताने के लिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर बताया ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, क्योंकि ऐसा कन्फेशन मैंने बहुत सालों में नहीं सुना है। तो एक्चुअली आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है? व्हाट इज दैट कन्फेशन?
2: यार रोशी, क्या बताऊँ यार, तेरे को पता है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हूँ, जैसे सबका होता है कि मतलब अलग अलग तरीका होता है टर्न आउट होने का, लेकिन मेरा ये है कि मेरे को जब तक गढ़वाली या पहाड़ी गाना नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं टर्न ऑन नहीं हो सकती बिल्कुल भी।
0: सीरियसली,
2: इवन मैं तो कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब बीच बीच में भी मैं गाने भी लग जाती हूँ।
0: ओके, वन सेकंड, तो आप बेसिकली हो कहाँ से? क्या आप इंडिया के, लाइक आर यू फ्रॉम इंडिया? कौन से कोने से हो इंडिया के?
2: मैं इंडिया के मतलब गाजियाबाद में रहती हूँ।
0: हाँ,
2: उत्तर प्रदेश के अंदर आती है।
0: हाँ, तो फिर ये पहाड़ी गानों का शौक कहाँ से लगा आपको?
2: क्योंकि मेरा होम टाउन, मतलब मैं उत्तराखंड से ही हूँ, होम टाउन मेरा उत्तराखंड ही है। वो होता है ना एक अलग सी वाइब, मतलब वैसी वाइब मेरे को गढ़वाली सॉन्ग ही दे सकते हैं, ना पंजाबी ना कोई, सिर्फ गढ़वाली गाने।
0: तो आप मतलब बीच बीच में गाने भी लग जाते हो, तो मेरे लिए भी गा के सुना दो, मुझे पता चलेगा कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं।
2: बिल्कुल गा सकती हूँ। बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, और भी गा के सुनाओ।
0: नहीं तो इसका मतलब क्या होता है?
2: इसका मतलब होता है कि मतलब हमारा एक वो होता है ट्री है।
0: हाँ,
2: वो 12 मतलब मंथ्स में,
0: हाँ,
2: 12 मंथ्स में उसमें फ्रूट होते हैं। ये हाँ, होता है इसका मतलब।
0: बट यू नो लाइक आई डोंट ली गेट वॉट योर वाइब इज, क्योंकि मैं जब स्पेनिश गाने सुनती हूँ एंड आई गेट इन द मूड, मुझे पता भी नहीं होता उन स्पेनिश गानों का मतलब क्या होता है। बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आपने मुझे फोन करके बताया कि यार रोशी, लाइक गढ़वाली सॉन्ग रियली डू इट फॉर मी। अपनी तरफ से क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल,
0: ये लीजिए। आई मीन मैं ये गढ़वाली किसी भी लाइक मेलोडी में नहीं कर रही हूँ, बट
3: यू've been रोशिफाइड।
0: कभी मैं आपके बॉयफ्रेंड से बात करना चाहूंगी एक बार।
2: हाँ जी, बिल्कुल।
0: इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई वैको कन्फेशंस है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं क्यों किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना किसी हीरो के बारे में, ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स, उन्हीं की कंपोजिशन। दिस सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। साडी सोनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन ऑन नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।
2: हाँ चुप कर लंघ जावे, कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी बांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पे जाओ, मेरा handle is @RJKanika. कोई गाना suggest करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके hit me up. I truly believe that गाने share करने से प्यार बढ़ता है. Countdown का जो अगले वाला गाना है, it's one of those collabs जो I'm quite surprised इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया. And now जब आप ये गाना सुन चुके हैं, everything about this collaboration just makes sense. I'm talking about Jasleen Royal and Badshah. उनका नया नवेला गाना इनाम. Countdown का अगले वाला गाना है, but before we play the song, I have to talk about Jasleen Royal. वो इस music industry की ऐसी artist हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. पिछले कुछ सालों से तो she's been giving us back to back viral hits like हीरिये. ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाया है उनमें उसके साथ. Then also साहिबा with स्टेबिन. दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे. बट यू नो, जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी. आई हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई हैव जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई. धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई. आई हेट टू से इट, बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस. जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है, आई लव द कंपोजर दैट शी इज. आई एम श्योर इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए हैं.

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई है आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाय जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेर शाह का रांझा जो बी प्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है करेका. एंजॉय. नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7 7

0: ऐश किंग की आवाज, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 7 पर हमने ऐश किंग की आवाज में किनिया सोनी सुना, उससे पहले जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम, जो कि एक री एंट्री था ऑन गाना नंबर 8। जसलीन इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए फिल्म के गाने भी कंपोज करे और अपने नॉन फिल्म गाने भी उतने ही बड़े बना दिए। And it's not at all an easy feat. कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बदला।
0: गली बॉय के साउंड ट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहाँ हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरिये के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, कॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। दिस सॉन्ग वॉज अ फिनोमेना, एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। एंड जस्ट द फैक्ट दैट उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के आई ऑलवेज फील सो इमोशनल फॉर एवरी आर्टिस्ट, कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं, इसीलिए हीरिये मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरिये मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरिये, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में, एक गाने का नाम है हीरिये। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कोर्स। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बार एक गाने की बारी। आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। तो कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। चलो काउंटडाउन पर अब आगे बढ़ने से पहले वक्त की सुई थोड़ी पीछे घुमाते हैं। आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बस मेंटली इमेजिन करो, आंखें रोड पर, छोटा सा कमरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और वो क्लिक वाली आवाज जब आपने कैसेट अंदर डाली और आपका फेवरेट गाना ऑन। कोई स्किप बटन नहीं है बॉस, गाना सुनना ही है क्योंकि गाना हमको बहुत पसंद है। दीज आर द सॉन्ग्स जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के वही आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं जिनको सुन के हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: And the song we're going to feature this week is
1: आँखों में तेरा ही चेहरा धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: गाने का नाम है आंखों में तेरा ही चेहरा बाय द बैंड आर्यन। साल 1999 में ये गाना रिलीज हुआ। आवाज जय वालिया की है। इस गाने को सुन के मुझे वही जमाना याद आ जाता है जब प्यार बहुत सिंपल था। कोई लफड़ा ही नहीं था कि सीन पे छोड़ दिया, ब्लू टिक नहीं आया, ऑनलाइन है या नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का, तो आप बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने दिमाग में। जो स्टेजेस ऑफ लव होते हैं ना, उसमें इन्फैटुएशन सबसे प्यारा होता है। जब पेट में वो प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, जब दिमाग में हम सिर्फ उनसे मिलने के सपने देख रहे हैं या उनसे जब मिले थे उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली कैप्चर्स दैट कि आंखों में तेरा ही चेहरा, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ब्रो। दिस इज द काइंड ऑफ लव जो हर लड़की चाहती है कि किसी लड़के को उससे हो जाए। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स टाइम टू फील दैट ओल्ड स्कूल लव। जय वालिया की आवाज में आर्यन द बैंड का गाना दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक। This week, you're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Aankho.

0: यार व्हाट अ सॉन्ग दिस इज, जय वालिया की आवाज, दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा, यू नो जब दिल कच्चा था और प्यार सच्चा था, ये उसी जमाने का गाना है। एट आरजे करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसा 90s 2000s का गाना जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ क्विकली एक इंडी पॉप क्विज। आंखों में तेरा ही चेहरा में एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म एक्टर हैं, बट उनकी पहली मूवी से पहले ही वो इस गाने में फीचर हो चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ, दुबला सा पतला सा प्यारा सा लड़का कौन है जो आंखों में तेरा ही चेहरा में फीचर हुआ था। एट आरजे कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर आर्टिस्ट के दिल की कहानी, गाने का नाम है अर्ज किया है। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग हैज बीन ऑन अ काउंटडाउन फॉर 25 वीक्स। अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है

कैश किंग का किनिया सोनी दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उसके बाद गाना नंबर 6 पर आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का कोक स्टूडियो सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी। लविंग दिस सॉन्ग अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 4। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डाब दबीना। अनूप जैन का अर्ज किया है स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक एक क्विक शफल हुआ है, एक गाना ऊपर एक गाना नीचे। मिट्टर और की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक एक बार फिर से एक पोजिशन ऊपर जम करके बंजारे का गाना बैरन, दिस हरियाणवी सेंसेशन ऑफ अ सॉन्ग। 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, शीशा ऑन नंबर 2 एंड बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ। लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉक 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20।

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा वीएफएक्स ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा स्पाई यूनिवर्स अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो
3: yeah.

You know, sometimes एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल हो ना हो, मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997, एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना, अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तन्हा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10।

एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइडस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है। हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है। जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं, पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं, और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर। नंबर 9।

टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, दो मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। कैन यू बिलीव इट that war in 2019 was his last big blockbuster and maybe that's why mujhe lagta hai ki bollywood ko phir se us scale ke superstar ki sakht zarurat hai meri nazar mein aur shayad aapki nazar mein sirf do log contenders hain ranveer kapoor and ranveer singh a talent dono ke paas hai they have some major acting chops lekin ab bari hai apni legacy likhne ki aur is waqt इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची टॉप 20 का नंबर 1 सॉन्ग गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यहीं एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची टॉप 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot. मिर्ची, It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

Mitchie. It's hot.

गुड मॉर्निंग। ओए कॉफी हाथ में है या अभी भी तुम ब्लैंकेट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में हो? अब ब्रेकअप का टाइम हो चुका है क्योंकि मैं बोलूं तो प्रिसिला आ चुकी हूँ लेकर तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर सुबह होती है थोड़ी सी फिल्मी, थोड़ी सी फनी एंड काफी देसी। अब चाहे तुम ट्रैफिक में फंसे हो या फिर ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने फ्रिज को खोलकर पिछले 15 सेकंड से घूरे जा रहे हो, यू आर इन द राइट प्लेस क्योंकि अगले कुछ घंटे तुम्हारे दिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट घंटे होने वाले हैं क्योंकि हम इन घंटों में बनाएंगे तुम्हारे पूरे दिन को मिर्चीदार। हम बोले तो मैं और तुम। नेक्स्ट लिटिल वाइल में होने वाला है कुछ बॉलीवुड का तड़का, मस्त म्यूजिक, फन स्टोरीज, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें और साथ साथ में कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। इतना सब कुछ तुम्हें एक ही पैकेट में मिल रहा है जिस पैकेट को कहते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए, ये किसने डिसाइड किया है ये वीकडेज जो है वो मंडे से फ्राइडे होते हैं? यार मेरी बॉडी तो थर्सडे को भी संडे की तरह बिहेव करती है। डज दिस हैपन टू यू? फटाफट से मुझे डीएम करके बताओ इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची Chris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Abhi chalati hu tumhare liye Mirchi tar bangers to wake you up. Stay tuned and stay hot.

मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। चलो एक मिनट में चलते हैं हिस्ट्री में टाइम ट्रैवलिंग करते हुए। सबसे पहले चलते हैं 1856 में, जब जन्म हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, वो लेजेंड जिन्होंने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट। और उसके बाद 1903 में फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची। सो टेक्निकली किसी की रोड ट्रिप कहीं ना कहीं इस दिन शुरू हुई होगी। फिर आया 1906, जब जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही हिम्मत और आजादी की स्पिरिट से जुड़ गया। जंप करते हैं 1952 में, इजिप्ट में रेवोल्यूशन हुआ और मोनार्की का चैप्टर दी एंड हो गया। और स्काई लवर्स के लिए 1995 में डिस्कवर हुआ कॉमेट हेल बॉब, जिसने दुनिया भर के लोगों को रात के आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। और 1999 में आते हैं, स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च हुई, जहां पर आइलीन कॉलिंस बनी हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल स्पेस शटल कमांडर। और ऐसा ही कुछ फन फैक्ट या फिर अनोखा फैक्ट तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और सोचो कि तुम मूवी देख रहे हो, स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैट डेमन, लेकिन एक डेंजरस एक्शन सीन में जो बंदा तुम समझ रहे हो वो बंदा है ही नहीं। सरप्राइज, वो एक्चुअली एक वुमन स्टंट परफॉर्मर है। जी हाँ, इनका नाम है डेविन डाल्टन। शी इज 4 feet 6 inches टॉल और उन्होंने दी ओडिसी में मैट डेमन का बॉडी डबल बनकर वो एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म किए हैं जहां पर जायंट मॉन्स्टर्स ओडिसियस का पीछा करते हैं और ट्विस्ट उनके सामने द 7 foot टॉल स्टंट परफॉर्मर्स थे। मैट डेमन ने तो खुद कहा है यार, माय बॉडी डबल वाज अ वुमन विद द ग्रेटेस्ट आर्म्स आई हैव एवर सीन। मतलब कि बाइसेप्स इतने सॉलिड है कि जिम मेंबरशिप भी खुद शर्मा जाए। देखो, कभी भी किसी को उसकी हाइट से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस, उसके टैलेंट और उसके स्किल सेट पर ध्यान देना चाहिए। वो कई बार लोगों का एक्स्ट्रा लार्ज ही होता है। वैसे अगर मुझे हॉलीवुड में किसी का बॉडी डबल बनना हो तो शायद मैं सिर्फ कॉफी पीने वाला सीन कर पाऊंगी, क्योंकि और कुछ मुझे आता नहीं है। तुम अगर किसी के बॉडी डबल बनते तो तुम कौन से सीन्स करते हैं? बताओ मुझे। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

क्या ही गाने लगाती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। मिर्ची मॉर्निंग्स में मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और चलो मौसम का हाल चाल पता करते हैं। अभी बाहर टेम्परेचर हो रहा है 62 डिग्री फारेनहाइट, व्हिच इज ब्राइट एंड सनी। अगर तुम मॉर्निंग वॉक पर निकले हो या फिर ऑफिस ड्राइव शुरू कर दी है तो वेदर बोल रहा है हेलो सनशाइन, लेकिन अराउंड 11 बजे के आसपास थोड़ा पार्टली क्लाउडी स्काइज आ जाने वाले हैं। मतलब कि सूरज जो है ना वो बादलों के साथ मिलकर आज मौसम को शेयर कर रहा है। आज का हाई रहने वाला है 81 डिग्री फारेनहाइट तक और लो जाएगा 62 डिग्री फारेनहाइट तक, लेकिन एक छोटू सा ट्विस्ट है, इट्स गोना फील लाइक 60 डिग्री से लेकर 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच तक। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी, सनशाइन और हवा मिलकर अपनी अलग ही स्टोरी बना रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जीरो रेन है। हां जी, 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन प्रिडिक्टेड है, तो आज अम्ब्रेला को गिल्ट फ्री होकर घर पर छोड़कर जाया जा सकता है। जैसे कल का कंपैरिजन करें तो आज थोड़ा सा कूलर फील होने वाला है। कल का हाई गया था 87 डिग्री फारेनहाइट तक और आज जाएगा 81 डिग्री फारेनहाइट तक। इसीलिए लेयर के प्लेयर बनो, साथ साथ में अपना SPF 50++++ छिपोड़ कर बाहर जाना और कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जरूरी है मिर्ची दार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरे आने की प्रिसला के साथ। सुनते रहो तुम मुझे एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हे गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवर के थ्री, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले मिस्टर बीस्ट यानी कि जिमी डोनाल्डसन ऑफिशियली मैरिड फेलो क्रिएटर थिया पुइसन। वेडिंग सेलिब्रेशंस रिपोर्टेडली एक पूरे हफ्ते तक चले हैं एट अ प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट और उनका कैप्शन था आई फाउंड मिस्टर बीस्ट क्यूट और ब्रांड कंसिस्टेंसी भी है इसमें। नंबर टू पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स को लेकर डेवलपमेंट्स जारी है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई प्यूनिटिव या रिटेलिटरी एक्शन ना लेने का अश्योरेंस दिया जाए और पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन पर कंसिडरेशन की डिस्कशन हो तो वो अपना फास्ट खत्म कर देंगे। इसी इशू पर अभिजीत दिपके जो कि सीजेपी के फाउंडर है उन्होंने अपना स्टैंड रिपीट किया है कि उनका प्रोटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक जारी रहेगा। एंड लास्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को एक ओपन इनविटेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हर इशू पर स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के हिसाब से एनी टाइम एनी प्लेस डिस्कशन के लिए रेडी है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-6472-44. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर तुम हडसन बर्गन लाइट रेल से कम्यूट करते हो तो ये सुनो, एक एडवोकेसी ग्रुप हडसन काउंटी कंप्लीट स्ट्रीट्स चाहता है कि लाइट रेल और भी फ्रीक्वेंट चले, हर 10 मिनट में और वो भी 24 आवर्स इंक्लूडिंग नाइट्स एंड वीकेंड्स। अभी तक उनकी पिटिशन को 700 से ज्यादा सिग्नेचर्स मिल चुके हैं और गोल है सपोर्ट को और बढ़ाना। एनजे ट्रांजिट जो है वो भी फॉल ऑपरेशंस और स्केड्यूलिंग का स्टडी शुरू करने वाला है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि बेटर ऑफ पीक सर्विस एक अच्छा आइडिया है, बस बजट भी साथ देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में बात हो रही है बर्गन काउंटी तक लाइट रेल एक्सटेंड करने की और फ्यूचर में बेफ्रंट और शायद एक दिन न्यूयॉर्क से भी बेटर कनेक्टिविटी करने की। अभी कोई फाइनल टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुई है लेकिन कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली ट्रैक पर चल रही है। मतलब आज की जो हेडलाइन है वो कह रही है कि कम्यूट में ट्रेन्स मिस कम हो और तुम्हें परफेक्ट टाइम पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स मिले और ज्यादा दूर तक मिले, विच आई थिंक विल इम्प्रूव दी एफिशिएंसी ऑफ एवरीवन। और एफिशिएंसी की बात हो रही है तो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए अगर तुम परफेक्ट ज्वेलरी ढूंढ रहे हो तो जरूर से विजिट करो आरके ज्वेल्स, जहां पर बेस्ट क्वालिटी तुम्हें मिल रही है एट बेस्ट प्राइस, क्योंकि उनकी स्टनिंग कलेक्शन जो है फिलहाल वहां पर मौजूद है, उसे एक्सप्लोर करो जाकर। और अभी वहां पर मिल रहा है फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड ऑन देयर एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन, क्योंकि डायमंड्स मे बी फॉरएवर लेकिन गुड डील जो है ना वो हाथ से निकल सकती कभी भी, तो इसीलिए पहुंचो फटाफट से आरके ज्वेल्स पर जहां पर तुम्हें मिल रहा है बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। अभी मिलने वाले हैं तुम्हें मिर्ची दर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। ऑफ कोर्स मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय बर्थडे सुपरस्टार्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर आज यानी कि 23 जुलाई को तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो मिर्ची फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, टाइट वाले जप्पी एंड एक पपी एंड साथ में हैप्पी बर्थडे। एंड गेस व्हाट, आज तुम अकेले केक नहीं काटने वाले हो, मतलब तुम अपने घर में अपने दोस्तों के साथ केक काटोगे, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जो केक काट रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट डैनियल रैडक्लिफ, हाँ जी, हमारे हैरी पॉटर जी। तो अगर तुम्हें भी आज ऑफिस में मैजिक की जरूरत फील होने लगे तो बस अकियो कॉफी बोल देना, गारंटी नहीं है लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। और बर्थडे है आज एक्टर वुडी हैरल्सन का, ये मुझे काफी पसंद है। साथ में हिलेरियस मार्लन वेन्स, सुपर टैलेंटेड कैथरीन हान और गिटार लेजेंड स्लैश का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और म्यूजिक लवर्स के लिए मिशेल विलियम्स फ्रॉम डेस्टिनीज चाइल्ड एंड साथ ही पॉल वीजली फ्रॉम द वैम्पायर डायरीज, करिश्मा कारपेंटर और द लेट एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर फिलिप सीमोर हॉफमैन, इनकी काफी सारी अमेजिंग मूवीज हैं, यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई। मतलब अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हारे अंदर ना टैलेंट की कमी है ना क्रिएटिविटी की और डेफिनेटली मैजिक की बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरा दिन सेलिब्रेट करो, एक्स्ट्रा डिजर्ट खाओ, कैलोरीज को भूल जाओ और आज के दिन तुम ढेर सारी सिर्फ खुशियां ही खुशियां मनाओ, ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। एंड नाउ आई एम गोना प्ले सम अमेजिंग म्यूजिक फॉर यू, एकदम मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। ये है इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो मुझे तो 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ओके जी, हम पहुंच गए वहां पर जहां पर तुम्हें गोल्ड रेट अपडेट मिलने वाला है। मेरा नाम है प्रिस्तला और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: राज वाज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,075 $4,075 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। राज ज्वेल्स के साथ आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें जहां पे आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 9 मंथ की फाइनेंसिंग के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, येलो सफायर्स, ब्लू सफायर्स एंड एमरल्ड्स, जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स आपको अपनी रिंग में डिजाइन करने हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स आप 0% इंटरेस्ट, 9 मंथ की फाइनेंसिंग में आज अप्रूव होने पे घर ले जाएं और बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे दें 9 मंथ में। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू।
0: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिस्तला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

पे बैठा, जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले। इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: लाठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, न मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा। या
1: Hey there, good morning. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड अब अराउंड द वर्ल्ड क्या घट रहा है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें फीवर और सिवियर बॉडी एक था और वो पेन किलर्स के साथ मैनेज कर रहे थे। उन्होंने जंतर मंतर ना पहुंच पाने के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वो शाम तक प्रोटेस्ट साइट्स वापस लौटने की कोशिश करेंगे। नंबर टू पर येट अगेन फ्रॉम इंडिया, पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक के एमपीज ने पार्लियामेंट प्रोमाइसेस में एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट और स्लोगन्स किए। ऑपोजिशन एमपीज नीट और पेपर लीक से जुड़े प्लकार्ड्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेशन के दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी गर्मा गर्मी में रही। एंड लास्टली, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक वायरल वीडियो के बाद एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को वहां की ड्यूटी से हटा दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उनकी ओरिजिनल पोस्टिंग पर वापस भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर लीगल प्रोसीडिंग्स और अकाउंटेबिलिटी की मांग भी सामने आई है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर कसरी फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू राशि जोन, जहाँ पर हम पता करेंगे कि आज हमारे दिन में क्या कह रहे हैं सितारे।
1: मिर्ची राशि जोन
0: एरीज यानी कि मेष राशि, फाइनली लग रहा है लाइफ थोड़ी सी सिंक में आ रही है। मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेड खत्म होने से कंफ्यूजन का ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, फन मोड तो ऑन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आर यू अवेलेबल पूछ रही है, इग्नोर मत करो इन्हें, गो डू योर ड्यूटी। लकी कलर फॉर यू इज कोबाल्ट, लकी नंबर इज 31। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वॉलेट को आज थोड़ा सा प्यार दो, कॉफी ठीक है लेकिन चौथी आइस्ड लाटे शायद जरूरी नहीं थी, बजट बनाओ, फ्यूचर वाला यू विल थैंक यू। लकी कलर फॉर यू इज लाइट पर्पल, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी खड़क राशि, आज इमोशंस से ज्यादा फैक्ट्स पे भरोसा करो, दिल क्यूट है लेकिन बैंक बैलेंस जो है ना उसका कैलकुलेशन दिमाग से चलता है। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, आज अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलो, हर बार डिप्लोमेसी की भी एक्सपायरी डेट होती है, बस सच बोलो, स्टाइल के साथ बोलो। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी खन्या राशि, मर्क्यूरी फाइनली सीधा चल पड़ा है और तुम्हारा ब्रेन जो है वो भी, जो फाइनेंशियल इश्यूज इग्नोर कर रहे थे आज उनका सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। लकी कलर फॉर यू इज नेवी ब्लू, लकी नंबर इज 40। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी मेरा राशि जोन पार्ट 2 में इन जस्ट अ व्हाइल। तब तक के लिए तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स सुनो जो आने वाले हैं और जाओ मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: क्लैरिटी टाइम मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अभी क्लियर करते हैं कि आज तुम्हारी राशि में क्या लिखा हुआ है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, जो इंसान रिसेंटली इमोशनल रोलर कोस्टर पे था वो आज सरप्राइजिंगली काम है। सेकंड चांस देना बनता है, राइट। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हर ट्रूथ जो है उसे बोलना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी पीस भी एक अचीवमेंट होती है। आज अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन स्किप करो। लकी कलर फॉर यू इज अजूर, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वीकेंड से पहले बजट चेक कर लो। शॉपिंग कार्ट को फिलहाल लेटर बोलना हेल्दी रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज बर्न्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 33। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जो प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लग रही थी आज उसका आंसर बिल्कुल सामने नजर आएगा। ओवरथिंकिंग बंद करो, एक्शन शुरू करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑबर्न एंड लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है, कभी कभी लाइफ स्पॉइलर अलर्ट के बिना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ट्रस्ट द प्रोसेस। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 42। That rhymed. Pisces यानी कि मीन राशि, क्रिएटिव एनर्जी फुल पावर में है, जो प्रोजेक्ट रुक गया था उसे दोबारा शुरू करो, इंस्पिरेशन आज ओवर टाइम कर रही है तुम्हारे लिए। लकी कलर फॉर यू इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 16। एंड दैट वाज द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट 2 विद मी प्रिसिला। ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, मुझसे फटाफट से कनेक्ट कर लो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

और बस आज की मिर्ची मॉर्निंग्स की ये सुबह यहाँ पर खत्म होती है, मतलब रैप अप का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक स्पोर्ट्स वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताकर जाती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने नेशनल क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग कैंप्स में पैडल को कंपलसरी कर दिया है। हाँ जी, अब सिर्फ नेट्स ही नहीं बल्कि रैकेट भी चलने वाला है वहां पर। प्लेयर्स हर दूसरे दिन लगभग 40 मिनट्स पैडल खेलेंगे ताकि उनकी फिटनेस, उनका मूवमेंट, उनके रिफ्लेक्सेस और फील्डिंग जो है वो और बेटर हो जाए। एंड ऑनेस्टली लॉन्ग ट्रेनिंग कैंप्स में थोड़ा सा फन तो बनता है यार। और पैडल सुन के मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि उन्हें बोटिंग भी करानी चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनको क्रिकेट खेलने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं। देसी लोग तो वैसे भी हर गेम में एक्सपर्ट होते हैं, तुमको नहीं लगता है? हर चीज में तो कॉम्पिटिशन करते हैं हम देसी लोग। तुम अपने रिश्तेदारों को, खुद को, मुझे, सबको देख लो। तो आज का टेक अवे है कि कभी कभी अपनी रूटीन जो है उसमें कुछ नया गेम ऐड करना चाहिए, अपने गेम को चेंज करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी तो खुश हो ही जाएगी, माइंड ज्यादा खुश हो जाएगा और मंडे थोड़ा लेस मंडे लगेगा। वैसे आज हम मंडे की बात नहीं करेंगे, वीकेंड वाइब्स आर ऑलमोस्ट हियर। मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी सुबह स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलूंगी तुम्हें फ्रेश म्यूजिक, मिर्चीदार बैंगर्स, बॉलीवुड की गॉसिप और नई नई खबरें लेकर। मेरा नाम है प्रिसला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। जाकर मुझसे कनेक्ट करो, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: हमने एक चीज नोटिस करी, बड़े दिनों से हमने पठती पठत पठंती नहीं बोला यार।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. यार ये जो वक्त है ना, ये जब गया तो इसके साथ हमारी संस्कृत की क्लासेस भी चली गई और साथ ही साथ हमारा ये कहना कि पठती पठत पठंती ये भी निकल गया यार। बड़ी मुश्किलों से याद किया करते थे यार हम, मुझे तो याद भी नहीं कि इसको क्या कहा करते थे, लेकिन आज एकदम से जब इस बात को मैंने सोचा और इस बात का जिक्र खुद से ही किया तो आई रियलाइज्ड सालों हो गए यार मुझे ये बोले हुए, और जो तसल्ली मिली है ना मुझे ये बोलकर, पठती पठत पठंती, ओहो हो हो हो। हालांकि मैं अपने सारे लेसन्स भूल चुकी हूँ लेकिन तसल्ली मुझे आज भी याद है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप और मैं साथ में बोलते हैं, हाँ, एट द काउंट ऑफ थ्री लेट्स स्पीक इट टुगेदर सो दैट हम हमारी पुरानी यादें जो है उसको ताजा कर पाए, क्या बोलते हो? तो एट द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3, पठती पठत पठंती। आई ना दिल को तसल्ली, कुछ तो है यार बात, कुछ तो है इन तीन लफ्जों में, कुछ ऐसी बात है जो शायद आई लव यू में भी नहीं महसूस हो रहा है आजकल। ये तीन लफ्ज ले जाते हैं हमें स्कूल की ओर, संस्कृत की क्लासेस की तरफ, जहां नंबर लाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आई डोंट नो अबाउट यू बट मैं मैथ्स से ज्यादा संस्कृत से डरा करती थी, क्योंकि मैथ्स का भी मुझे समझ तो आ जाया करती थी, संस्कृत ना मुन्ना ना, ना मुझे समझ आती थी और ना इसकी ट्यूशन क्लासेस मिलती थी कि कोई समझा दे। बहुत टफ हुआ करता था यार लाइफ का वो दौर, आई टेल यू। चलो जी, विद दिस मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब काले काले बाल गाल गोरे गोरे अरे ओरे ओरे, याद आया ये गाना? और ये गाना तो फ्रॉम द फिल्म जिद्दी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड दिस फिल्म जिद्दी, इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का रोल बड़ा पसंद आया था. इनफैक्ट एज अ किड मैं तो डर गई थी भाई उस रोल से. लेकिन आशीष विद्यार्थी का कहना था कि उनका ये जो रोल था ना, ये डायरेक्टर ने एक्सटेंड कर दिया था. उनका रोल वॉज सपोज टू एंड एट द इंटरवेल, लेकिन फिर इवेंचुअली उस कैरेक्टर को मेन विलन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और फिर उसको लंबा चलाया थ्रू आउट द फिल्म. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म, तो इस फिल्म से ज्यादा किसी ने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट और 1997 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी. और इसके गाने, जिनमें से एक गाना ये भी था कि मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर. जस्सी का गाया हुआ ये गाना तो 90s की पार्टीज में बड़ा मशहूर हुआ करता था यार, जो हमने कभी अटेंड नहीं करी क्योंकि हम तो बच्चे थे. लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता था कि ये गाना हिट है क्योंकि काउंटडाउन शोज पर हमेशा ये गाना आया करता था. पता नहीं कितने जमाने तक तो काउंटडाउन शोज पर ये गाना रहा है. और ऑफकोर्स जब भी कभी इधर उधर म्यूजिक सिस्टम बजता था, किसी शादी में या किसी छत पर या कहीं पर भी, तो ये गाना तो चलता ही चलता था. हमें भी पसंद था और सबको पसंद था, तो बात जाहिर थी, जग जाहिर थी कि ये गाना दुनिया भर को पसंद है. और इस गाने ने पंजाबी पॉप को इसी तरीके से बॉलीवुड मेनस्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया था. एंड इन फैक्ट उस जमाने की रिसर्च वर्क के हिसाब से ना, ये फिल्म जो हिट हुई ना, वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा की वजह से बहुत हिट हुई, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये यूपी बिहार और पंजाब जैसे स्टेट्स में बहुत चली थी बिकॉज ऑफ द रॉ अपील. और सीटी मार डायलॉग्स लोगों को बड़े पसंद आए, जो आई थिंक लोगों की आज भी पसंद है. पब्लिक आज भी ना खूब सीटियां बजाती है जब डायलॉग्स एकदम अटपटे निकल कर आ जाते हैं, या यूं कहें कि चटपटे निकल कर आ जाते हैं. और साउथ की फिल्में इसी वजह से काम कर रही है. इस फिल्म को देखने के बाद विलेन से तो डर लग ही रहा था, ऊपर से सनी पाजी का गुस्सा, वो देखकर भी ऑडियंस बड़ी खुश हो रही थी. लेकिन जो ऑडियंस सनी पाजी का गुस्सा देखकर खुश हो रही थी ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन वो लोगों को डरा रहा था. कैसे, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, सनी पाजी के गुस्से से लगता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा जब जिद्दी मूवी शूट हो रही थी ना, उस टाइम पर सबको लग रहा था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And there was this one scene जहां पर सनी पाजी को ना एक टेबल गुस्से में तोड़नी थी। वो टेबल थी तो प्रॉप, लेकिन टूट ही नहीं रही थी जो कि एक्सपेक्ट किया गया था उससे। तो सनी पाजी ने फुल इंटेंसिटी मोड में एक रियल वुडन टेबल तोड़ दिया यार, और जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो सारे के सारे जो है एकदम भौचक्के रह गए। एंड इन फैक्ट ड्यूरिंग द इंटेंस सीन्स ना, सनी पाजी अपने कैरेक्टर में इतने ज्यादा रहा करते थे कि एक को एक्टर ने जोकिंगली ये भी कह दिया था कि जब सनी पाजी गुस्से में हो रहे होते ना, अपने कैरेक्टर के अंदर होते हैं, तो आप कट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हो और दुआ करते हो कि ये गुस्सा जो है ये ठंडा हो जाए, ताकि ये कट अपने आप निकल कर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस गुस्से के डर से कोई सेट पर कट नहीं बोला करता था, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे एक और मजेदार बात है इस फिल्म के बारे में, और वो ये है कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनुआ, उन्होंने ये बात बताई थी कि उनके पास ना इस फिल्म को लेकर एक छोटा सा आइडिया था जिस पर कि इन्होंने पूरी तरीके से काम नहीं किया था। एक प्रॉपर स्टोरी नहीं थी, और ये लोग जा रहे थे सनी पाजी के पास इस फिल्म की स्टोरी को नरेट करने के लिए। तो रातों रात उन्होंने और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं बबलू पचीसिया, उन दोनों ने बैठ कर एक स्टोरी बनाई। और पचीसिया जो है वो नोटबुक और पेन लेकर बैठे और उन्होंने पूरा का पूरा जॉट डाउन किया। फिर उसके बाद वो लोग गए स्क्रीन प्ले राइटर के पास, वहां पर उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, और अगली सुबह दे वेंट एंड गेव द नरेशन टू सनी देओल। और इतनी मेहनत उनकी सफल हो गई क्योंकि सनी पाजी ने बोल दिया हाँ। और जैसे ये लोग नरेशन के बाद उस होटल रूम से बाहर निकले, तो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ने एक दूसरे को जो झप्पियां पाई हैं, बिकॉज इट वॉज अ बिग डील टू एक्चुअली गेट सनी देओल ऑन बोर्ड। एंड सनी देओल नरेशन में अगर ना कह चुके तो ना कह चुके, उसके बाद उनकी हाँ कभी होती नहीं है। स्टोरी लाइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ये सब कहते हैं, और वो बड़ी संजीदगी से बैठ के स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स धक धक तो सभी का दिल कर रहा होता है उस टाइम पर। लेकिन एक बात और निकल कर आ गई इस फिल्म से कि फिल्म का नाम तो जिद्दी था ही था, और इस फिल्म में काम करने वाले भी जिद्दी ही थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आर मोहन भी एक मुझे कुछ कहना है बनाने जा रहे थे, जिसका 50 दिन का अमेरिका का शूट स्केड्यूल था, जिसमें 22 दिन का शूट तो डन भी था, कर चुके थे ये लोग, लेकिन बॉबी वॉक्ड आउट ऑफ द फिल्म है।
1: नब्बे की गप्पे।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, 22 दिन शूट करने के बाद सनी देओल डिसाइडेड कि बॉबी अब इस मूवी में काम नहीं करेंगे, व्हाटएवर।

बॉबी की जगह अरविंद स्वामी को लेकर आएंगे और जो अमेरिका का शूट था वो वापस से अमेरिका में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अमेरिका वाला शूट हम नेपाल को अमेरिका बता के करेंगे। शूट चालू नहीं हुआ था, सिर्फ डिसीजन मेकिंग हुई थी कि बाकी सारे एक्टर्स और कास्ट सेम रहेगी, सिर्फ अरविंद स्वामी आएंगे और बॉबी तो ऑलरेडी चले गए हैं। लेकिन इससे पहले कि और कुछ हो पाता, हमेशा हमेशा के लिए ये फिल्म शेल्फ हो गई। सनी के कहने पर बॉबी ने मूवी छोड़ी। ये बॉबी देओल है या बेबी देओल? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज ऑन।

0: ना स्कूल में हुआ करता था, जब कभी मैम ना ऐसे सारे बच्चों को देखते हुए एक तरफ उनकी निगाह होती थी, एक डायरेक्शन में, अब वहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए और मैम ना पॉइंट आउट कर रही होती थी, हे यू, और हम सारे के सारे जो होते थे वो ऐसे होते थे, कौन मैं, और उधर से मैम जवाब देती थी, हाँ तुम। बड़े होते होते सिचुएशंस कैसी बदल गई ना, अब दो लवर्स आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं, हाँ फनी इजंट इट।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। अजनबी के इस गाने के बाद चलो अब मेरा भी मिक्स हो ही जाए, क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों की धुनों को मिक्स करके मैं आपके लिए चला देती हूं और आपको गेस करना होता है कि ये जो दो गाने धुनों में सुनाई दे रहे हैं ये दरअसल है क्या। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस जी, अब आपको डीएम करना है माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, और बता देना इन दोनों गानों के नाम, एज सिंपल एज दैट। स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: लिज्जत पापड़ के एड्स पर हम बचपन में खूब झूमे, लेकिन आपको इन बेसिक से पापड़ों की हिस्ट्री का पता है, जिसने पूरे इंडिया में ये साबित कर दिया था कि पापड़ इज इक्वल टू लिज्जत पापड़।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, 1959 में जब औरतें इलिटरेसी और डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस कर रही थी, एट दैट टाइम 7 विजनरी वुमेन फ्रॉम मुंबई डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स विद अ बिजनेस आइडिया। 80 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हुआ था ये पापड़ का बिजनेस, जो कि इनके घर से ही शुरू हुआ। कभी तो दिन में सिर्फ 4 पापड़ बिकते और कमाई कुछ ना के बराबर होती थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और फिर वो वक्त भी आया जब गाड़ी चल पड़ी। 1962 के एक कॉन्टेस्ट के जरिए इस ब्रांड का नाम रखा गया लिज्जत पापड़, जिससे ब्रांड को काफी ट्रैक्शन मिला और सेल्स बढ़ गई। आज भी ये ब्रांड इंडिया एंड अब्रॉड जाना जाता है, एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड ओनरशिप अपॉर्चुनिटीज टू एम्पावर वुमेन। कहने को तो लिज्जत पापड़ सिर्फ हमारे बचपन की एक याद है, एक एड है, एक ब्रांड है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी काफी ग्रैंड है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कुर्ता पजामा में से कुर्ता निकल गया है और रह गया है बस पजामा।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आजकल कुर्ता पजामा इज समथिंग जो सिर्फ शादियों और त्योहारों पर ही पहना जाता है और घर पर पजामा टी शर्ट में ही बंदा नजर आता है। बट बैक इन 90s ऑफिस से आने के बाद हर शाम ना डैडी कुर्ता पजामा ही पहना करते थे। पहनते वो थे इन कपड़ों को और सुकून मुझे मिलता था। सफेद रंग के कॉटन के ये कुर्ते पजामे का चलन मुझे बड़ा पसंद आता था और हमेशा पसंद आता रहेगा। यू नो, ये सारे के सारे कुर्ते पजामे जो है ये धोबी के पास जाया करते थे। इन पे कलफ लगा करता था, कड़क प्रेस हुआ करती थी, सफेद दिखते थे हमेशा के हमेशा। और अलमारी में भी जब इनका स्टैक रखा जाता था ना तो वो इतना नीट लगता था ना कि वन आफ्टर दी अदर सारे कुर्ते पजामे सफेद हुआ करते थे, लेकिन अलग हुआ करते थे। हर दिन का एक अलग कुर्ता पजामा। और ऐसा कभी होता ही नहीं था कि डैडी ऑफिस के कपड़ों में बैठकर डिनर किया करते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर कि वो घर आने के बाद चेंज करते थे और फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाया करते थे। और संडे को तो ये साफ जाहिर होता था कि आज संडे है बॉस, क्योंकि डैडी पूरे दिन कुर्ते पजामे में जो होते थे उस दिन, और फिर नहाने के बाद भी वैसा ही एक सफेद कुर्ता पजामा पहना करते थे। कुर्ता पजामा ना उस टाइम का कॉर्ड सेट हुआ करता था, लेकिन बंदियों के लिए नहीं, बंदों के लिए। हर एक घर में कुर्ते पजामे का चलन इतना हुआ करता था जो आज कहीं देखने को मिलता ही नहीं है यार। इनफैक्ट आज भी जब किसी बंदे को मैं कुर्ते पजामे में देखती हूँ ना, माय हार्ट स्किप्स अ बीट फॉर श्योर। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर आपको चूज करना है बिटवीन टी शर्ट एंड पजामा एंड कुर्ता पजामा, तो घर में पहनने के हिसाब से व्हाट वुड यू प्रेफर? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। एंड ये प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियां भी बता सकती हैं यार कि उन्हें बंदे किस में ज्यादा पसंद आते हैं, और लड़के ऑफ कोर्स अपनी चॉइस बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर कागज की कश्ती,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार तुम थी तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, मगर कागज के टुकड़े से बने होने के बावजूद तुम जिगर का टुकड़ा बन गई थी। रफ कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर तुम्हें बनाने पर बड़ी डांटे पड़ा करती थी, लेकिन क्या करते यार, आदत से मजबूर थे कि अगर बारिश हुई है और छत पर वाटर लॉगिंग है तो हम कैसे बिना एक भी कागज की कश्ती तैराए रह सकते थे। और सिर्फ बरसात ही नहीं, स्कूल में भी कभी कभी ना लास्ट पीरियड जब फ्री होता था तो बोर होने के बजाय हम एक पेपर लेते और तुम्हें बनाने लग जाते। तब एक्चुअली टाइम पास करने के लिए रील्स नहीं हुआ करती थी ना, तो इतनी क्रिएटिवली टाइम पास किया करते थे। और तुम सबसे ग्लैमरस लगती थी अगर तुम्हें मैगजीन के कागज से बनाया जाता था, पर ये बहुत रेयर हुआ करता था कि मैगजीन को रद्दी में पाया जाता था, कॉज उसकी भी तो घर में अपनी ही जगह थी। आज क्रूज में ट्रैवल कर चुके, एरोप्लेन्स में बैठ चुके, यॉट पे ट्रैवल कर चुके, लेकिन वो फील कभी नहीं आई जो तुम्हारे साथ खेलते हुए सोचा करते थे, ये इमेजिन करते हुए कि हम तुम में बैठकर नदी क्रॉस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं सिर्फ इतना इमेजिन ही नहीं किया करती थी कि मैं तुम्हारे अंदर बैठी हुई हूँ, बल्कि अगर आसपास कोई मकोड़ा दिख जाता था ना तो मैं उसे तुम में बिठा दिया करती थी, ताकि कोई तो सवारी एक्चुअली में तुम्हारे मजे ले सके। बचपन में ना ये गजल नहीं सुनी थी, लेकिन जब बड़े होकर ये सुनी तो सिर्फ सुनी नहीं, चुभी। जब जगजीत सिंह साहब ने गाया कि कोई मुझे लौटा दे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तुम्हें बनाना भूल गई हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूली हूँ। अपने ख्यालों में तुम पर सवार होती वाटर लॉग्ड नदी को क्रॉस करती हुई तुम्हारी सारा। यहाँ के अलावा अगर आप मुझे कहीं ढूंढना चाहते हैं, सो द करेक्ट एड्रेस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कभी खुशी कभी गम के जितने भी पेपी ट्रैक्स है ना, उन सब में कहीं ना कहीं एक नोकझोंक है। इनफैक्ट शावा शावा जो गाना है उसके अंदर भी बाय द एंड ऑफ द गाना अमित जी और जया जी के बीच में एक छोटी सी टसल हो ही जाती है। वैसा ही ये गाना है जिसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर के बीच की टसल से शुरू हुआ ये गाना एंड में प्यार में तब्दील हो ही जाता है। अलका याग्निक, सोनू निगम, करीना कपूर की आवाज में दिस गाना इज कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: दीवाना है देखो यार, ये गाना मुझे बहुत पसंद था। मोर सो बिकॉज एक तो ये डिस्कोटेक वाला गाना था और इसके अंदर इतना फैशन था कि ओ हो मजा ही आ जाता था यार। देखो हमें तो स्कूल में फैशन फॉलो करने को मिलता नहीं था, जो कर रहा होता था उसे देख देख कर ही हम खुश हो जाया करते थे। वैसे ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली इज अ हेड्स अप। जब आपको प्यार होने वाला होता है ना, तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका दिल जो है वो तो कह रहा होता है कि यार इससे प्यार में पड़ जा, इससे प्यार में पड़ जा, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो आपको कह रहा होता है ओहो सीधे रहो, ज्यादा प्यार व्यार में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्योंकि दिमाग को पता है ना यार कि एक बार अगर दिल ने अपना दिल दे दिया तो होगा ये कि रातों की नींदें उड़ जाएंगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, काम जो है वो डिले होते जाएंगे, इंसान यहाँ बैठा होगा लेकिन यहाँ ना होकर कहीं और होगा। एंड दिमाग डजंट वांट टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। तभी तो कहा गया है कि दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो, अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना। देखो लगता तो है वाकई में, लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर रहा होता है इंसान की नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पढ़ना, इतनी जल्दी प्यार में नहीं पढ़ना, इतनी आसानी से गिव इन नहीं करना। और मुझे ना इस गाने की ये वाली जो लाइन है ये बड़ी प्यारी लगती है कि पहली बार देखा है ऐसा अजनबी ना अजनबी के जैसा। एंड आई टेल यू वन थिंग, आपको भी ये बात कहीं ना कहीं लगी होगी कि न जाने कितने सारे लोगों से ऑन अ डेली बेसिस मिलते हैं, कभी कभी तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ डेट पे भी चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारे लिए बना होता है या जिसपे दिल आना होता है ना, वो हमें पहली बार भी जब मिला होता है ना तो भी वो अजनबी नहीं लग रहा होता है, अपना सा लग रहा होता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली अ साइन कि कुछ तो बात है कि ये अजनबी अजनबी सा नहीं लग रहा। ऐसे वाले सिनेरियोज में कंफ्यूज मत हुआ करो, दूसरी तीसरी और फिर चौथी डेट, और फिर आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। लेकिन डिस्कंटिन्यू मत कर देना पहली डेट के बाद हाँ, अगर ऐसी वाली फीलिंग आ रही है तो। चलो जी, अभी जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर तो मिल ही जाती हूँ मैं बाय द नेम मिर्ची सारा, तो दिल करे तो वहीं ढूंढ लीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लिसन टू द नेक्स्ट ट्रैक। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: चामच छोड़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी जीप्स, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जी।
2: हिंदी फिल्मों के कॉमेडियंस का जब जिक्र आएगा, महमूद साहब का नाम सबसे ऊपर आएगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि ये कॉमेडी क्या बचपन से करते थे और फिल्मी कॉमेडी उन्होंने कहाँ से सीखी, सुनिए।
3: मैं बचपन से मैं चीजों को ऑब्जर्व बहुत करता और जिसके साथ में बैठ के अगर मैंने बात करना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल जो सामने वाला ही बोलता है कि आपकी शक्ल मेरे जैसी होती जाती, आपकी लैंग्वेज मेरे होती जैसी, ये मेरे में आदत बचपन से। ऐसा नहीं कि मैं को 30 मार्क्स हूँ, मेरे दिमाग से ही सब चीजें निकली। बहुत सारी चीजें देख के मैंने सीखी है। उसमें नंबर वन क्रेडिट गोज टू राज कपूर, उनके साथ में बैठ बैठ के बहुत सीखा है मैंने। गुरुदत्त दादा के साथ में बैठ बैठ के बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठ बैठ के इन्हें काफी इन्हें सीखा मैंने फिल्म के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
2: देखिए बस ऐसे ही सीखते सीखते बंदे ने अपना 50 साल का ब्रिलियंट करियर खड़ा कर लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी जीप्स, ओनली ऑन मिर्ची।
1: क्या था महमूद साहब और अरुणा ईरानी जी का रिलेशनशिप? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे अरुणा जी इंटरव्यूज में इस बारे में काफी ऑनेस्ट रही हैं। सुनिए एक बार उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: जब महमूद साहब के साथ मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे काम दिलाना शुरू किया, मुझे काम मिलने लग गया था, मेरा घर संभल गया था उनकी वजह से। तो मुझे लगता था कि खुदा ने भेजा हुआ आदमी है। इमोशंस होते होते कब लाइकिंग बढ़ गई। आई नो दैट ही वॉज अ मैरिड मैन, वी कुड गेट मैरिड, लेकिन वी वर मोर देन एक फ्रेंड्स रहते, उससे भी आगे थे हम। ही मेड माई करियर। पर जब मेरी ये फिल्म बनी बॉम्बे टू गोवा और एक रूमर बाहर आई कि आई एम मैरिड टू महमूद, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आता था, बस ही वॉज अ स्टार। लोग उनको ही पहले पूछते थे, सुना आपकी शादी हो गई, तो जस्ट यूज टू नच, ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे। दैट स्पॉइल माई करियर, क्योंकि महमूद साहब से अगर शादी हो गई है तो महमूद साहब तो अब इसको काम नहीं करने देंगे। सी हाउ ही मेड माई करियर एंड हाउ ही रूइंड माई। उन्हें लगता था कि अगर ये हीरोइन बन गई तो ही विल बी लेफ्ट अलोन।
1: इस टाइम अरुणा जी के करियर में ऐसा ब्रेक आया कि उनको सॉर्ट ऑफ रीस्टार्ट करना पड़ा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: नई जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: আমার ঝড়েটা নাই দিয়ে
1: ওজি কমেডিয়ান ওজি ভাইজান মাহমুদ স্পেশাল চারু কে সাথ অন পুরানি জিপস ওনলি অন মির্চি
2: वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्लेड बाय महमूद साहब इस गुमनाम फिल्म वाला उनका किरदार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो जो बटलर बनते हैं, डोमेस्टिक हेल्प बनते हैं उस फिल्म में, उनका वो हैदराबादी एक्सेंट वाला किरदार जिसको याद है अमिताभ बच्चन साहब ने भी अपने गाने, वो जो गाना था खातून की खिदमत में सलाम अपुन का, उसमें लिटरली कॉपी किया था उस कैरेक्टर को। अच्छा, इस किरदार के बारे में महमूद साहब ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था, सुनिए।
3: क्या था कि एक मैं छोटा सा स्किट किया करता था मामू का। अब मामू क्या है कि मामू नाक से बोलते हैं। अब आप उसकी तारीफ करें तो बहुत तारीफ करते थे, और जैसे आपने बोला कि मामू आप नाक से बोलते तो गालियां देते।
2: वैसे इनका नाक से बोलने वाला किरदार दिल जिगर किडनी सब निकाल के ले गया सर। और इसी फिल्म में तो था उनका वो आइकॉनिक गाना और वो डायलॉग,
4: तू है हर गाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, हमें ख्यालों में काम चला लेंगे।
5: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में।
2: हकीकत में मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या

0: ताली ताक ढूंढ ताक ताली ताक जमी ताक दालाम तो ताक ढूंढ ताक ताजे के नंतर ताक ढूंढ ताक नाक नाक ढूंढ ताक नाक नाक ढूंढ ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी ता गुदारी के नंतर जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी ता गुदारी के नंतर जम तारी जग तारी ताक नाक नाक
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: আমার জড়েটা নাই দিয়ে
1: ওজি কমেডিয়ান ওজি ভাইজান মাহমুদ স্পেশাল চারু কে সাথ অন পুরানি জিপস ওনলি অন মির্চি
0: আমা পকড় কে রাখা গা দিয়ে
2: হিন্দি ফিল্মো কে লেজেন্ডারি কমেডিয়ান महमूद साहब मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ दी ओजी भाईजान जी उनको भाईजान कहा जाता था और वो अपनी फिल्मों के जरिए ऑडियंस को तो हंसाते थे शूटिंग के वक्त अपने को स्टार्स को भी बहुत हंसाते थे। सुनिए एक टीवी कॉमेडी शो में जितेंद्र साहब ने महमूद जी के बारे में क्या इंसिडेंट शेयर किया था।
3: मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान ही वाज अ जीनियस ही वाज ट्रेमेंडस। अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाजा है साइड में, मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते, फिर हंसना नहीं हंसी आ रही। मैं क्या करूँ सोचा तुम भाईजान आए, तू एक काम कर, जब तेरा हंसने का सब शॉट आएगा ना बात करते करते, तू दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस। तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते देखा भाईजान पैंट उतार के खड़े
2: पैंट उतार के कौन खड़ा हो जाता है भाई। बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया है जितेंद्र जी ने महमूद जी के लिए, ही वॉज ट्रिमेंडस टू मच आई थिंक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अमर जोड़ेगा ना जी।
1: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी चीज, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जी।
2: हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सीन्स में से एक है फिल्म प्यार किए जा का कॉमेडी सीन, जो महमूद साहब और ओम प्रकाश जी पर पिक्चराइज था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी चीज़ पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में इस कॉमिक रोल के लिए महमूद जी को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
3: मेरे को मिला, मुझे मिला, लेकिन 90% काम उनका था। मैं इम्बॉस हुआ उनके रिएक्शन से, जो रिएक्शन उन्होंने किया, तो ऐसा यानी टाइमिंग हम लोगों का और एक अंडरस्टैंडिंग आपस में।
2: एक्चुअली इफ यू सी दैट सीन ना, तो ये सीन आपको दो बार देखना पड़ता है, एक बार महमूद जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा उस पर ओम प्रकाश जी जो रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, फिल्मों में कॉमेडी वर्सेस ट्रेजेडी के बारे में सुनिए एक बार महमूद साहब ने क्या कहा था।
3: एज फार एज कॉमेडी कंसर्न, आई टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। अब जब आप पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में, और उसमें अगर कॉमेडी अच्छी हुई तो धर से जो 1000 आदमी सामने बैठा है ना, तो हाँ करके हंस देता, ताली वाली बजा देता। अब ट्रेजेडी सीन अगर अच्छा भी हो तो आपको ये पता नहीं लगता कि सामने वाला रो रहा है या सो रहा है।
2: कॉमिक लेजेंड फॉर अ रीजन, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: अमल छोड़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी जीप्स, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जी।
2: जीवन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना, तो एक काम करो, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यूट्यूब पे जाके महमूद कॉमेडी सीन्स टाइप करो और मजे लो। मैं भी जब ऐसा कर रही थी तो उनके जो फेमस सीन्स है ना, पड़ोसन के या प्यार किए जा फिल्म के, बॉम्बे टू गोवा, वो सब कॉमेडी सीन्स तो आ रहे थे। तब मेरी नजर पड़ी एक और कॉमेडी सीन पे, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन आप ये डायलॉग सुनो उनका जरा।
3: ज्योति, तुम्हारे लिए खबरी खुश है, मैं जो हूँ ना, मैं अस्पताल में जितने वार्ड बॉय है ना, उनकी यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। बस अब तुम जल्दी से बीमार होकर अस्पताल चली आओ, फिर देखो मेरे विटामिन एम में जो तासीर है वो किसी डॉक्टर की दवाई में नहीं। अगर डार्लिंग तुम बीमार नहीं हो सकती हो तो वो जो तुम्हारा बाप है ना, पापी कठोर कसाई, उस मेंढक को यहाँ फौरन भेज दो ताकि मैं उसकी टटर हमेशा के लिए बंद कर दूं।
2: 25 सेकंड के बाद में कितनी कॉमेडी कर गया ये बंदा, कॉमेडी लेजेंड फॉर अ रीजन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आमा चौड़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कमीडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी चीज़, ओनली ऑन मिर्ची।
0: आमा पकड़ कर रखेगा थे।
2: देश में भाषाओं को लेकर कितना बवाल होता है आए दिन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा आज नहीं हो रहा है, पहले भी होता था। सुनिए पुराने इंटरव्यू में महमूद साहब ने क्या शेयर किया था कि जब वो अलग अलग जगह शूटिंग करने जाते थे तो क्या होता था।
3: आउटडोर बेंगलोर गया था, वहाँ पे एक आदमी मेरे को बोला कि भाई साहब ऑटोग्राफ साइन करो। मैं ऑटोग्राफ साइन करके उसको दिया तो उन्हें बोला इंग्लिश में नहीं तुम्हें तेलुगु में ऑटोग्राफ साइन करो। मैं बोला भाई इंग्लिश के साइन सीखने के लिए मेरे को 6 महीने लग गए थे, अब तेलुगु के ऑटोग्राफ साइन करने के लिए मालूम नहीं कितने साल लगेंगे। खैर वहाँ से जब मैं दिल्ली गया तो एक साहब बोले हिंदी में ऑटोग्राफ साइन करो। दिल्ली से पुणे आया तो एक साहब मेरे को बोले कि मराठी में ऑटोग्राफ साइन करो। पुणे से जब मैं गया अहमदाबाद तो एक साहब बोले कि गुजराती में ऑटोग्राफ साइन करो। मैं एक्टर आदमी इसमें फंस गया, मेरे लिए तो गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या, मद्रास क्या, बंगाल क्या, सब एक ही बराबर है। मैं बहुत सोच सोच के एक आइडिया निकाला, जब कभी भी कोई भी मेरे पास आएगा आके बोलेगा कि महमूद मियां ऑटोग्राफ दो जरा साइन करो, तो मैं बजाय साइन करने के उनको अपना अंगूठा दे दूंगा।
2: सही बात है, इस तरह की कोई बात करे तो अंगूठा दिखा दो। वैसे आजकल अंगूठा दिखाने का मतलब भी बदल गया है, अंगूठा दिखाना मतलब लाइक करना। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: ओ गारे गारे
1: ये अम्मा को बटवा दिया
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये
2: चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी
3: मेरे मन के द्वार ये भूत

0: चतुरा या घोड़ा या चतुरा या घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुरा बोला गा
1: एक चतुर ना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: ड्रामा छोड़ेगा नहीं जी।
1: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी चीज़, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जी।
2: पुरानी फिल्मों के, एक्चुअली पुरानी फिल्मों के क्यों, द कॉमेडी किंग महमूद साहब इतने पॉपुलर थे, उनके सीन्स का इतना बेसब्री से फिल्मों में इंतजार किया जाता था कि हीरोज एक्टर्स उनसे डरते थे, घबराते थे कि भाई कई फिल्म में महमूद तो नहीं है, ये सारी लाइमलाइट ले जाएगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक टेलीविजन कॉमेडी शो पे धर्मेंद्र साहब ने महमूद जी के बारे में क्या कहा था।
3: ये मेरा बहुत जिगरी था, ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे सिवाय धर्मेंद्र के। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर हंसते हंसते बल पड़ जाते थे।
2: अच्छा, इस बारे में खुद महमूद साहब ने सुनी एक इंटरव्यू में क्या कहा था।
4: मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ, होता क्या था कि वो मेरे काम से नहीं डरते। वो क्या है कि सब हीरो लोग की आदत है ना हीरोइनों पे लाइन मारने की, हीरोइन आई तो जरा कॉलर वॉलर यूँ करके, तो ये कॉलर ऊपर ही करते रहते थे और मैं अपना काम कर जाता था।
2: देख रहे हैं आप टैलेंट साहब का, सीधी सादी बात को कैसे कॉमेडी बना देते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi, it's hot. Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: আমার জোরে গান আছে।
1: ওজি কমেডিয়ান, ওজি ভাইজান, মাহমুদ স্পেশাল, চারু কে সাথ অন পুরানি জিপস, ওনলি অন মির্চি।
2: एक बार किसी इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब से उनकी एक्टिंग में कॉमेडी के बारे में बात की जा रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तब उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि भाई जो एक्चुअली कॉमेडियंस हैं उनके आगे अमिताभ बच्चन साहब की कॉमेडी कुछ भी नहीं है। किन कॉमेडियंस का जिक्र किया था बच्चन साहब ने, सुनिए।
3: And I've always admired two comedians in the film world. I admired many of comedians. These two stand out. One is Mahmood Bhai and one is Nagesh from South. There used to be a lot of exchange of films between the two. Nagesh was a comedian. Eventually, films were made around him as the main character. And Mahmood Bhai was the same thing. Started off as a junior artist dancer in a group dance. And look where he reached. And it was Guru Bhatt who discovered. He was a group dancer. And then from there, his talent. And then films used to be made with him as the title. Great comedian, great artist.
2: वैसे ये तो आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन साहब के करियर में महमूद साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके स्ट्रगलिंग डेज में महमूद साहब ने अपनी प्रोड्यूस्ड फिल्मों में उनको काम करने का मौका दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: আমার জড়ে কেন এসে
1: ওজি কমেডিয়ান ওজি ভাইজান মাহমুদ স্পেশাল চারু কে সাথ অন পুরানি জিপস ওনলি অন মির্চি
2: की फन फिल्म बॉम्बे टू गोवा मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ विच वॉज को प्रोड्यूस्ड बाय महमूद जी जो इस फिल्म में एक्टर भी थे और अमिताभ बच्चन के करियर की ये काफी इम्पोर्टेंट फिल्म थी। इस फिल्म से और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक इंसिडेंट एक पुराने इंटरव्यू में महमूद जी ने शेयर किया था, सुनिए।
3: बहुत मजा आया था और हम लोग बॉम्बे से निकले वी वेंट अप टू गोवा। अब एक गाना था उसमें, अब ये गाने पे अमिताभ साहब डांस नहीं कर पा रहे, देखा ना है सोचा ना है, वो गाना बस के अंदर पिक्चर है जोड़ा था। तो जब मैं शूटिंग पर गया तो बोले अमिताभ को बुखार आ गया 102-103 और वो रूम में चले गए। मैं गया तो रो रहा है,
4: मुझसे नहीं होगा डाल, मास्टर जो बता रहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा भैया।
3: हमने देखो जो आदमी चल सकता है ना वो डांस भी कर सकता है मेरे हिसाब से। हाँ तुम आज रेस्ट करो, कल आओ और कल देखो इंशाल्लाह होगा सफल।
2: आगे क्या हुआ सुनते हैं थोड़ी देर के बाद राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
5: ओहो अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
6: नहीं नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: लाइक यू।
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर नफर

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी जीप्स, ओनली ऑन मिर्ची।
1: अमिताभ बच्चन साहब की करियर के शुरुआती दिनों में एक शख्स जिन्होंने उनकी काफी मदद की थी वो थे द कॉमेडी किंग महमूद साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। महमूद साहब ने उनको न सिर्फ बहुत सारी फिल्मों में काम दिलवाया बल्कि अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल भी दिया। इस फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब डांस नहीं कर पा रहे थे, तब सुनिए महमूद साहब ने उनकी लाइफ थोड़ी इजी कैसे की। एक इंटरव्यू में महमूद साहब ने शेयर किया था,
2: अमिताभ साहब डांस नहीं कर पा रहे, बोले अमिताभ को बुखार आ गया 102-103, मैं गया तो रो रहा
3: है, मुझसे नहीं होगा डांस, मास्टर जो बता रहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा भैया।
2: मैंने अपने मास्टर से कहा कि देखो कल पहला शॉट लो, अगर शॉट खराब भी हुआ ना तो बस में जो 40 बड़े सब ताली बजाओ जोर जोर से और आगे बढ़ाओ, दूसरा शॉट रिटेक मत करो। अच्छा वाह वाह वाह, क्योंकि एक्टर की मेन खुराक उसकी तारीफ। तो हमने सबको समझा दिया, अब ये आए मेकअप में मेकअप कर रहे, ये गए जाके उन्होंने शॉट दिया, इतना गंदा शॉट दिया लेकिन लोग ताली और जाना आगे। अब वो जो मूड में आया लंबू और फिर डांस करने लगा, आखिरी में वो पहला शॉट लिया जो खराब दिया।
1: भाई नेक्स्ट टाइम आप जब ये गाना देखें तो ये बात ध्यान रखिएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: नामच छोड़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी जीप्स, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जे।
2: फिल्म प्यार किए जा के आइकॉनिक कॉमेडी सीन की तारीफ जब भी की जाती थी तो महमूद साहब कभी खास क्रेडिट नहीं लेते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। कभी वो अपने को स्टार ओम प्रकाश जी, उनका जिक्र करते थे। ओम प्रकाश जी ने भी क्या ही काम किया है उस सीन में भाई। एक और बार एक इंटरव्यू में सुनिए महमूद जी ने क्या कहा था।
3: उसमें क्रेडिट मुझे नहीं मिलनी चाहिए, उसमें क्रेडिट वो साउथ इंडियन एक्टरों को मिलनी चाहिए जिनसे रीमेक्स है। तो नागेश वहाँ का बड़ा फेमस कॉमेडियन है, तो उसने किया ये रोल, तो वो लोग हमको दिखाते हैं सबको। अब उसमें हम क्या करते हैं, मैं स्पेशली, कि उसको कैसे चेंज करूँ ताकि मैं नागेश ना बनूँ, तो वो मैंने चेंज किया।
2: और फिल्मों में इनकी फेवरेट को स्टार कौन रही थी सुनिए।
3: देखिए मेरे साथ में तीन लड़कियाँ रही, शोभा खोटे, मुमताज और अरुणा ईरानी। उसमें आज भी नंबर वन पे मैं बोलूंगा शोभा खोटे की। मुमताज तो हीरोइन के लायक थी और अरुणा भी अच्छी थी, बट शोभा का मेरा बहुत अच्छा जमता।
2: चलिए आप भी यहाँ पे बात जमा दीजिए, मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: सब प्रोटेस्ट का चक्कर है बाबू भैया।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चीपीट यूनियन हो आप एंड विजय वर्मा ने कुछ एक ऐसा इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसके बाद उनके फॉलोअर्स घटे।

0: सब प्रोटेस्ट का चक्कर है बाबू भैया।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी यूनियन हो आप एंड विजय वर्मा ने कुछ एक ऐसा इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसके बाद उनके फॉलोअर्स हुआ जो हर दूसरे इंसान का फिलहाल हो रहा है हु आर स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाकी दोस्ती के नाते मेरे फॉलोअर काउंट को थोड़ा बढ़ा दो यार। मिर्ची श्रुति के नाम से इंस्टा और फेसबुक में मिलूंगी, वहां जाके वो बटन दबा दो। टिल देन कीप लिसनिंग टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उन्हें नवाबर से पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो भाई ड्रिल ये होता है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: आपकी बात हो रही है नवनील से।
0: ओ माय गॉड दैट स्टाइल, आई लाइक इट, क्लॉक इट। अच्छा आप ये एक बात बताओ, गेम खेलने के लिए तैयार हो आप?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, जजंतरम ममंतरम के लीड एक्टर कौन है?
3: जावेद जाफरी।
0: क्या बात है, जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल धमाल धमाल धमाल।
0: धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का तो करने का?
3: मुन्ना भाई एमबीबीएस।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: तो मुन्ना भाई को, संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: जिसमें रणवीर था, ये जवानी है दीवानी।
0: बहुत बढ़िया, ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल्की को प्यार होता है।
0: यस, कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: बहुत बढ़िया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में पिंक फोन कौन चलाता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन रोहन लड्डू रायचंद किस फिल्म में है?
3: जिसमें शाहरुख खान है। कभी खुशी कभी गम।
0: कभी खुशी कभी गम में कह दिया, बस कह दिया, ये कौन बोलता है?
3: कह दिया तो कह दिया, करीना कपूर।
0: आए हाय, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो ये नाम लिया है ना तुमने नवनील, बट कोई नहीं, इस गेम को इतना मस्त लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय नवनील जिस पॉइंट पे अटक गए और उसके आगे का गेम अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी तो आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।